गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत की बहुत वड़े भाग श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दर्शन संगत सेवा प्राप्त हुई। आप संगतां दे चरणां विच बेनती है पटिंगटन दे गुरु घर दे समुचे प्रबंध वालों जथेदार भाई हरदीप सिंह निजर दा शहीदी दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। संगतां

Sí. मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लाग गई मेरा। परम सत्कार योग गुरु की साजी नवाजी साध संग जीओ, आओ सतगुरां दा शुकराना करिए। पाशा आप जिया ने साडे ते तरस खादा ते किरपा कीती, कर तरस खा करके अपनी हजूरी बख्शिश कीती। कोटान कोट धन्नवाद है सतगुरु जी आप जिया दा। स्वासा रूपी पूंजी नूं गुरु की हजूरी अंदर आ करके सफलिया कर रहे हो। अवप्रकरण दा आरंभ करन तो पहला साहिबां दी बख्शिश कीती हुई फतेह और वाहेगुरु गुरमंत्र दा जाप। भाई गुरदास साहिब वचन करदे ने, वाहेगुरु गुरमंत्र है जप होमे खोई। एक शरीरक रोग हुंदा, एक कर्म रोग हुंदा। जिहड़ा शरीरक रोग आ वह दवाइयां ना ठीक हुंदा है, तां कर्म रोग जिहड़ा वह गुरु की हजूरी अंदर आण के नाम जपण दे नाल ठीक हुंदा। डाक्टरां को दवाई लई जांदे आपां, अरोग जिहड़े तां वह ठीक हो जांदे ने, तां कुछ को रोग लंबे हो जांदे ने। फिर उन्हां नूं कहा जांदा कि इहदे कर्मां दा रोग आ, इह कटिया नहीं जाणा, भोगना ही पवेगा। पर पाशा कहिंदे ने जिहड़ा सिमरन करदा है, अकाल की इबादत करदा, उहदी शरण विच आउंदा, प्रभ की शरण बहुत बार दोहराउंदा हुंदा, वचन कमाल दा वचन है सतगुरां दा, प्रभ की शरण सगल भय लाथे दुख बिनसाए, सुख पाया। पर एको ही गल आ, इथे आण के एकाग्रता दे नाल सिमरन भगती ते सरबण भगती दे नाल जुड़ना पवेगा। दो ही गल्लां जरूरी आ गुरु की हजूरी, सिमरन भगती ते सरबण भगती। सिमरन भगती रसना दे नाल नाम जपना, ते सरबण भगती गुरु की बात गुरसिखां दे कोलों सुननी, यह सरबण भगती आ। जदों सिखा ये दोने भगतियां कमाउण लग पिया ना, ते सतगुरु पातशाह महाराज का वचन है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। सिमरन करन दे नाल सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। भाई गुरदास साहब कहिंदे वाहे गुरु गुरमंत्र है जप होमे कोई, वड्डा रोग आ, आओ इस रोग का इलाज करिए। आपां इलाज किदां, दास आप जिया नूं फतेह अर्ज करेगा, जो फतेह अर्ज करांगा तो वाहेगुरु गुरमंत्र का जाप हो जाएगा। विद्वान इनू आंदा कि यह सिमरन भगती है, सिमरन भगती नाल सतगुरु पातशाह महाराज दस्खत भी करते हैं, तो मोर भी लाते, मोर केड़ी लाते, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। सिमरन करने नाल सुखां की प्राप्ति होंदी है। करो बेनती प्रवान, दोनों हथ जोड़ के अदब सहित गुरु के चरणों में शीश झुका के बुलंद आवाज में आखो, जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं कल रोज

68 हर आया है, जिदा ग्यानी जी ने उचारण किया है, दो बार हर ला बोल के जमक लाई, फिर दो बार हर बोल के विश्राम लाया, ते फिर दो बार बोल के नाल खीरला पद हरे बोल के संपूर्ण पंक्ति कीती। ए ध्यान रखना जदों भी इको तरह दे पद आउण, जे विश्राम विच नाम ना होवे जां हर पद खास करके होवे, तो साध संगत जी सारिआं नूं इकट्ठा पढ़न दा हर हर हर हर इदां करन दा यतन नहीं करना। ध्यान दे नाल हर हर हर हर हर हरे हर हर हरे ध्यान दे नाल उचारण करना, स्पष्ट होने चाहिए सारे। हर

0: प्रेम भगत मानी सुख जानिया, जो प्रेमा भगती नू मान लिया फिर सुख जान लिया, मानी ते जमक ला के जानिया ते विश्राम लाउणा, तृप्त अगाने मुक्त पए।
1: जोत समाय समानी जाकै अछली प्रभ पहचानिया।
0: ए पाठ जाकै जेड़ा आया है संबंधक रूप दे विच करना, साध संगत जी पोला उचारण करना, कठा नहीं करना, ते अछली पाठ भी पोला ही करना, अछली नहीं कहना जा अछली भी नहीं कहना, जिवें उचारण कीता है अछली पोला इसे तरह उचारण करना।

0: हाँ जी साध संगत जी, ओ ए शब्द सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी ने एमनाबाद दे विच उचारण कीता। गोविंद लोक साधु महात्मा ने सतगुरु जी नूं बेनती कीती कि सतगुरु जी ओ कृपा करके ओ परमात्मा वाहिगुरु जी दे संबंध दे विच सानू दसना करो, ओ कैसा बेअंत है परमात्मा। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਸੁਣੀਏ।
1: ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੈ ਮੁਖ

0: जा की भगत कर है मुन जन पूरे मुन जन सेव है।
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
3: एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुरप्रसाद। मनुख की बरतर परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग की कीती है। इस दी दुनिया कुछ बाहर पई है कुछ अंदर है। जैसे शरीर दी अंदर दी पवन दा बाहर दी पवन नाल संबंध जुड़िया है, शरीर दे अंदर पए हुए पानी दा बाहर दे पानी नाल संबंध है, शरीर दी मिट्टी दा बाहर दी मिट्टी नाल जुड़िया हुआ संबंध है। असी कुछ बाहर हाँ कुछ अंदर हाँ। एक श्वास असी बाहर कढ़दे हाँ एक अंदर लै लैंदे हाँ। जे सिर्फ अंदर लईए तो कहीए बाहर नहीं कढ़ना तां वी असी नहीं रह सकांगे, और जे बाहर ही श्वास कढ़ दईए तो फिर अंदर ना लै जाइए तां वी जीवना औखा होवेगा। इत्थों ही अध्यात्मवादियों ने यह तत् कढ़िया है कि असी कुछ बाहर हाँ कुछ अंदर हाँ। साड़ी दुनिया कुछ बाहर है कुछ अंदर है। कुछ बाहर दी दौलत है कुछ अंदर दी दौलत है। कुछ बाहर दा कुटुंब परिवार है कुछ अंदर दा कुटुंब परिवार है। बाहर दा जो कुटुंब परिवार है साडा उसकी तो सूझ बूझ सानू पूर्ण रूप दे च है, पर अंदर दा साडा की परिवार है इसकी जानकारी गुरु नानक देव जी महाराज कराते ने। दूसरी उदासी का भ्रमण करके जब आप तीसरी उदासी की पूर्ण रूप से तैयारी कर लगे तो आप दी माता जगत माता तृप्ता जी ने आपनू प्रेरिया कि हुण तुसी कुटुंब वाले हो परिवार वाले हो, थोड़े बच्चे हैगन थोड़ी पत्नी भी हैगी और परिवार विच रहना भी थोड़ा धर्म है मुख धर्म है। तो उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माता प्रति जो बचन उच्चारण किए ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बकायदा दर्ज ने, आपने फरमान किया माता मैं जिधर भी जाना अपना परिवार नाल लैके जाना और मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं, परिवार मेरे नाल होंगे जिस पासे भी मैं जावा। तृप्ता जी हैरान हो गई कि परिवार नाल जांदा असी सारे इत्थे ही आंदे कोई नाल गया नहीं, मरदाने ते बाले तो बिना परिवार दा कोई फर्द नाल नहीं, पर नानक जी कह रहे ने परिवार मेरे नाल है और मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल जांदा है। ये ते सुदाइयां वाली गल होई। अक्सर संसार दी दृष्टि दे च भगत लोग महापुरुष पागल ही कहलाए गए, उन्हां नूं पागल ही आख्या गया। कारण उन्हां दे विचार उन्हां दे बोल समाज दा हिस्सा नहीं बनते सन, व्यवहार दा हिस्सा नहीं बनते सन। रोज़मर्रा दी जिंदगी दे च उन्हां दे विचारां नूं उन्हां दे व्यवहार नूं उन्हां दे बचनां नूं ढालना बड़ी औखी गल हो गई। जिस तरह पागल दे बोल संसार नाल तालमेल नहीं खांदे समाज दा हिस्सा नहीं बनते, भगतां दे बोल भी समाज दा हिस्सा नहीं बनते। इस वास्ते जिथे पागल समाज नालों टुट जांदा है करीबन करीबन भगत भी समाज नालों टुट जाते हैं। अज तक का इतिहास यही कहता है। और गुरु नानक की बाणी ने तो साफ फैसला कुन गल कह दिती है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना, भगत ते संसारी का जोड़ कदी जुड़िया ही नहीं, मेल कदी होया ही नहीं। जद गुरु नानक देव जी महाराज ने यह आख्या कि परिवार मेरे नाल जांदा है और मैं जिधर जाना परिवार अंग संग है, तो तृप्ता जी हस पईआं आखण लगे नानक जी तुसीं वाकई सुदाइयां दी तरह गल करन लगे। जगत ते सुदाई कहिंदा ही सी बई तू सुदाई है, अज मैनू भी कहना पएगा ये बोल सुदाइयां वाले ने पागलां वाले ने, परिवार ते सारा इत्थे ही हुंदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे मां ये ते सोचण सोचण दी गल है, ये ते मनुख दे मनण मनण दी गल है। मैं जो कह रहा बिल्कुल सही कह रहा, मैं जिधर जाना मेरा परिवार मेरे नाल जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी ने पूछ लिया, यह दस जिहड़ा परिवार नाल जाता है उहदे च मां है पिता है? साहब कहन लगे हाँ, जिहड़ा परिवार मेरे नाल जाता है उहदे च मां भी है। तो हुण ते हैरान होईआं ते खिड़खिड़ा के हस भी पईआं, पुत्तर तू वाकई सुदाइयां वाली गल करदा है, वाकई पगलियां वाली गल करदा है, मैं ते कदी नाल नहीं गई, मैं ते इत्थे तलवंडी दे च ही रही हाँ, पर तू कहना मेरे नाल है मां। फिर सोची पै के कहिंदियां ने किधरे ऐसा ते नहीं तू मेरी याद नाल लै जाना है, ते यही आखना चाहुंदा होवें ते मैं समझदी ना होवां। साहब कहन लगे हाँ, कहना ते कुछ मैं ऐसा चाहना मां अजे भी तू नहीं समझी। कहिंदे ने भगतां तो ब्रह्म ज्ञानियां तो चार तरह के जड़े मनुख ने वो कोई लाभ नहीं उठाते, एक ते मां बाप, दूसरे शरीक, तीसरे जिगरी दोस्त और चौथे दुश्मन, ये कोई लाभ नहीं उठाते, ये उन्हां दी गल नूं समझना भी नहीं चाहते और उन्हां तो लाभ भी नहीं उठाना चाहते। तो ममता दी मारी हुई तृप्ता ममता दी दृष्टि नाल गुरु नानक नूं वेखदी है और गुरु नानक इस दुनिया तो बहुत उच्चे अगां दी गल कर रहे हैं, मां मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल आउंदा। क्या उस परिवार विच मां भी है? हाँ मां भी है। तो तृप्ता जी ने पूछ लिया, नानक जी दसो उस मां दा नां की है जो नाल जांदी है? तो सतगुर माता दा नाम दस दिन, परिवार दे सारे फरदां दा नाम दस दिन और ए शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर गौड़ी राग विच दूसरे नंबर ते आया। सतगुर कहिंदे ने माता मत पिता संतोख है, सत भाई कर एह विशेख। मेरी जो माता है वह शुभ मत है, चंगी मत है, ये कदम कदम ते मेरी रखिया करती है, मेरी हिफाजत करती है। असी उसनू यतीम कहते हैं जिसकी मां मर जाए, पर गुरु नानक कहते नहीं उसनू यतीम ना आखो जिसकी मां मर जाती है, यतीम उसनू आखो जिसकी मत मर जाती है। जिसकी मां मर जाए वह जिंदा रहने के वसीले लभ लैंदा है, ठोकरां तो कई दफा बच भी सकता है, पर जिसकी मत मर जाए वो ते कदम कदम से ठोकरां खांदा है। बुद्धिहीन मनुख कदम कदम से ठोकरां खांदे ने। तो साहब कहिंदे ने कि चंगी मत श्रेष्ठ मत उत्तम विचार उत्तम फिलसफा प्रभु चिंतन, ये जिहड़ी चंगी मत है ये मेरी मां है और मेरे नाल है और हर कदम ते मेरी हिफाजत कर दी है, मेरी पालना कर दी है, मेरे ते ममता डुलांदी। तो ठीक है, चंगी मत ए मां होई, पिता कौन है? संसार दे जितना सारा अनर्थ चल रहा है ये मत दे मरण नाल चलदा है। जब मत मर जाए तो मनुख गुंडा हो जाता है, बदमाश हो जाता है, दुराचारी हो जाता है, चोर बन जाता है। दुनिया दे जिस जिस दी भी मत मर गई है उन्हां मनुखां दे कारण बड़ा अनर्थ है, जिन्हां दी मां मर गई है उन्हां दे कारण करके संसार नूं कोई हानि नहीं है, बल्कि उते विचारे दया दे पात्र ने। पर जिन्हां दी मत मर गई है वो ऐसे यतीम ने, कई दफा समुची मनुखता नूं यतीम बनाउण दे च भागी बन जांदे ने। तो माता मत पिता संतोख, साहिब कहिंदे ने मेरे पिता दा नां है संतोख, हर हालत विच मैनू खुश रखता है। लोभ ते संतोख की व्याख्या दो लफ्जां विच करनी होवे तां इतनी है, जो कुछ है जैसा है सब ठीक है, ये संतोखी की भाव दशा होंदी है। जो कुछ है जैसा है परवान है कबूल है। लोभी की मानसिक दशा की है, जो कुछ है जैसा है कबूल नहीं, जैसा परिवार है, जैसा संसार है, जैसे मां बाप ने, जैसी धन संपदा है, जैसी मेरी प्रलब्ध है, ये प्रवान नहीं, ये कबूल नहीं। ते जद कबूल नहीं तो दुखी होवेगा, बेचैन होवेगा। आम कहावत है कि लोभी बंदा फुलां दी सेज ते भी तड़पदा है, संतोखी बंदा अंगारियां ते बैठ के भी मस्त रहिंदा है। और इस दे सबूत मिले ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी मुस्कुराए ने, प्रभु दे गीत गाए ने। संतोखी मनुख हर हालत विच आनंद विच होवेगा, और लोभी मनुख हर हालत विच पीड़ित होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। साहिब कहिंदे मेरे पिता का नाम है संतोख। एक गाथा चेते आई है, फातेह आजम सिकंदर कहिंदे ने जद हिंदुस्तान नूं फतेह करन वास्ते आया लंबी चौड़ी सेना लैके, तां जिस वक्त दरिया सिंध अबूर करन लगा, सिंध दे तट दे ते एक अजीब मस्त फकीर लेटिया होया सी रेत विच। सेना सारी दरिया पार कर चुकी सी, आखरी टुकड़ी विच सिकंदर आप सी। उस मस्त फकीर नूं वेख के रुक गया। बचपन तो ही सिकंदर फकीरां दा मुश्ताक रहा। नेड़े चला गया, रेत विच लेटिया होया ए महात्मा वेखदा है सिकंदर नूं, पुछ बैठा, सिकंदर कित्थे चले, किहड़े पासे गमन कीता। सिकंदर कहण लगा, फकीर साईं, मैं हिंदुस्तान फतेह करन चला है, लंबी चौड़ी सेना लेके। तां फकीर कहण लगा, ठीक है, ए दस, जद तू हिंदुस्तान फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा? आखण लगा, फिर मैं हथ दे उत्ते हथ धर के थोड़ी बैठना, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहण लगा, जे तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा? कहिंदे ने, जितने चिर तक सही जवाब ना मिले सवाल अपनी थां ते खड़ा रहिंदा है। समाधान सही ना होवे तो समस्या अपनी थां ते खड़ी रहिंदी। सिकंदर हैरान होया, सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, मैं जो भी जवाब देना उहदे नाल सवाल मिटदा नहीं इस फकीर दा। तो उस फकीर ने कहा, जे कल्पत कीता होया तू होर मुल्क भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा? तां सिकंदर कहण लगा, फिर मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा, मैं बैठे नहीं रहना, मैं सुस्त आदमी नहीं हां, मैं कोई होर मुल्क फतेह करांगा। फकीर कहण लगा, ठीक है, पर सवाल ते अपनी थां ते खड़ा, जे तू होर मुल्क भी फतेह कीता फिर की करेंगा? गुस्से च आके सिकंदर कहण लगा, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा, जमीन दा एक इंच खिता भी नहीं रहण देंगा जो मेरे कब्जे विच ना होवे, जो मेरी पकड़ विच ना होवे, मैं सारी दुनिया फतेह करांगा। सिकंदर सोचदा है हुण सवाल खत्म, पर नहीं, फकीर फिर बोलिया, अच्छा सिकंदर ये दस, जद तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा? ये ते खाबो ख्याल विच भी नहीं सोचिया सी सिकंदर ने, किस तों अगां भी कोई जवाब देना पेगा। सिकंदर, जब तू सारी दुनिया फतेह कर लवेंगा फिर की करेंगा? तो फिर सिकंदर कहण लगा, फिर मैं अपने घर जावांगा, आराम करांगा, यूनान वापस जावांगा, आराम करांगा। फकीर कहण लगा, तू 100 पुआड़े पाके आराम करेंगा? ते असी आराम कर रहे हैं, असी रेत विच लेटे हैं, असी आराम करदे पए हैं। जे तू आराम करना ते आ इत्थे लेट जा, असी आराम देचा। तू 100 पुआड़े पा के आराम करेगा ते असी आराम देचा, इत्थे तू स्वयं अंदाजा लगा तू अगे है कि असी अगे हाँ। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान तो वापस जांदे होया सिकंदर रस्ते दे च ही दम तोड़ गया, उन्हूं आराम नसीब ना होया। मनुख की कई दफा सारी भज दौड़ आराम वास्ते आउंदी है, ते आराम उसे दिन नसीब आउंदा है जद चार मनुख चुक के चिता ते रख दें दिन। इस तो पहले आराम किथे, भज दौड़ है आराम वास्ते, पर भज दौड़ मनुख दे कोल रह जांदी है, आराम नहीं रह जांदा। पर जे मन दे संतोख होवे ते ऐसा मनुख हर वक्त विश्राम विच है, ऐसा मनुख हर वक्त आराम विच है, उदी भज दौड़ विच भी कुछ विश्राम होवेगा। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, संतोख मेरा पिता है, मैं जिथे भी जाना है मैनू विश्राम विच रखदा, आराम देंदा, सुकून देंदा। माता मत पिता संतोख सत भाई कर एह विसेख। तो त्रिपता जी ने पूछया, नानक जी यह ते गल समझ दे च आ गई कि जो मत है श्रेष्ठ मत है यह थोड़ी मां है, जो संतोख है यह थोड़ा पिता है, पर परिवार विच सिर्फ मां बाप ते नहीं आते, पत्नी भी होंदी है। असी सुलखणी नाल थोड़ा विआह रचाया सी, थोड़े बच्चे भी हैं। जिहड़ा परिवार थोड़े नाल जांदा है क्या उस दे च पत्नी है, क्या उस दे च बच्चे हैगे ने? साहिब कहिंदे ने हां। सतगुरु देव जी महाराज का फरमान, सरम सुरत दोए ससुर भय करणी कामण करमन लै, करणी भगती उच्चा इखलाक आचरण। ये भगती मेरी कामण है, मेरे नाल रहिंदी है, अठे पैर मेरे नाल रहिंदी। भगती रूपी कामण का जन्म कित्थों होया? साहिब कहिंदे ने साहा सरम सुरत दोए ससुर भय। शर्म मेहनत, सुरत स्याणप विचार टिकाओ एकाग्रता, मेहनत रूपी सोहरा ते सुरत रूपी सस दे संजोग तो एक लड़की का जन्म होया जिसका नाम है भगती। साहिब कहिंदे ने यह मेरी कामण है, यह मेरी स्त्री है। इसका जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया है, निज भगती सीलवंती नार रूप अनूप पूरी आचार, जिच्चर वसी पिता के साथ तिच्चर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सतपुरुख मनाया गुर आणी घर में ता सर्ब सुख पाया। भगती नू नार आख्या है साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी। कहिंदे ने ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। ज्ञान का जन्म तर्क तो है, संशया तो है, भगती का जन्म श्रद्धा तो है। इस वास्ते असी अक्सर देखते हाँ कि स्त्री जगत विच श्रद्धा प्रधान होंदी है, पुरुष जगत विच ज्ञान प्रधान होंदा है। पर श्रद्धा तो हीणा ज्ञान अधूरा है और ज्ञान तो हीणी भगती भी अधूरी है। दोहां ने संपूर्ण होना है। भारत के ऋषि मुनिया ने के चंगे बोल बोले ने कि पुरुष भी अर्ध अंग है, स्त्री भी अर्ध अंग है, दोवें अर्ध अंग ने। शरीर करके आकार करके तो ये अर्ध अंग है, पर विचार करके सूक्ष्म देही करके भी अर्ध अंग है। जितने चिर तक पुरुष नू श्रद्धा ना मिल जाए पुरुष अधूरा ही रहिंदा है। तर्क ते नास्तिकता दे जन्म दाते पुरुष ने, और अंधविश्वास से भटकते हुए जिहड़े मनुख ने कहिंदे ने इसना दे तादाद स्त्रियों की ज्यादा होगी, क्योंकि श्रद्धा है ज्ञान नहीं, पुरुष कोल ज्ञान है श्रद्धा नहीं, दोवें अधूरे रह जाते। ज्ञान अख है, श्रद्धा पैर है। हुण चलण वास्ते पैर होवन, वेखण वास्ते अख ना होवे मनुख भटक जाएगा। वेखण वास्ते अख होवे चलण वास्ते पैर ना होवन तां वी पहुंचना बहुत औखा है, बहुत औखा है। ज्ञान पुरुष है, भगती स्त्री है। जब किसी मनुख दे अंदर चाहे वह स्त्री है ते चाहे वह पुरुष है, ज्ञान ते भगती दोहां दा प्रवेश हो जाए, दोहां दा अवतरण हो जाए, वह मनुख पूर्ण पुरख हो जाता है, चाहे वह स्त्री है चाहे पुरुष है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर भगती भी है, उसके अंदर श्रद्धा भी है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने माता मत मत विचार उज्ज्वल मत ज्ञान का पहले जिक्र ही कर दिता है। शर्म सुरत दोए ससुर भय करणी कामण करमण लै, मेहनत मुशक्कत ए मेरा सौरा है, भाव मैनू अपनी मेहनत ते भरोसा है, मैनू अपनी मुशक्कत ते भरोसा है। गुरु नानक दी दुनिया सुस्त नहीं है, आप मुशक्कत नू बड़ी प्रधानता देंदे ने। उदम करेंदिया जीव तू कमावदिया सुख भुंच, ध्यावदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। जिवें उदम करके ही धन कमाईदा है, उद्यम करके ही धर्म कमाईदा है। मुफ्त दे च धन नहीं मिलता, मुफ्त दे च धर्म भी नहीं मिलता। हो सकता है धन मुफ्त दे च भी मिल जाए, धर्म कतई मुफ्त दे च नहीं मिलता, कमाना पैंदा है, लाजमी कमाना पैंदा है। असी देखते हाँ पिता का कमाया हुआ धन पुत्र नू मिल जाता है, कई दफा दादे का कमाया हुआ धन पोतरे नू मिल जाता है, पर धर्म ते स्वयं कमाना पैंदा है, किसी का कमाया हुआ नहीं मिल सकता। इस वास्ते संसार दे च धन वधदा जा रहा है, धर्म घटता जा रहा है, क्योंकि धन तो दूसरे का भी मिल सकता है। प्यो का धन पुत्र नूं मिल गया, दादे का धन पोतरे नूं मिल गया। धन की लाटरी भी निकल आउंदी है, धर्म की लाटरी नहीं निकलती। धर्म तो स्वयं कमाना पैंदा, आप कमाना पैंदा, मेहनत करके कमाना पैंदा। और यह निजी संपदा खुद निजी हत्थां नाल संग्रह करनी पैंदी है। इस वास्ते संसार विच धन वधदा जा रहा है और दिन ब दिन धर्म घटदा जा रहा है। इत्थे धर्म जो है प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकदा और पुत्र भी पिता नूं नहीं दे सकदा। धन ऐसा है कि पुत्र ने कमाया वह पिता की झोली च पा सकदा है और पिता ने कमाया वह पुत्र दे हत्थां च दे सकदा है। पर धर्म स्वयं कमाना पैंदा है, प्यो पुत्र नूं नहीं दे सकदा, पुत्र पिता नूं नहीं दे सकदा। इसका इतिहासक सबूत है। गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कोशिश सी कि मेरा जिहड़ा वड्डा पुत्र है पृथ्वी चंद, यह भी नाम का रसिया बने, यह भी बाणी पढ़े, यह भी परमात्मा नाल जुड़े। पर नहीं, वह झगड़दा ही रहा, वह नास्तिक ही रहा, वह कलेश पांदा रहा। उहदे संबंध च महाराज दे बोल भी ने, काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सौ जगरत पाप। वह लड़दा ही रहा, झगड़दा रहा, इच्छा ख्वाहिश होने के बावजूद भी गुरु रामदास जी महाराज की पृथ्वी चंद भगत ना बन सकया, संत ना बन सकया, धर्मी ना बन सकया। इत्थे पिता पुत्र की झोली च नहीं पा सकया। दूसरे पासे असी देखते हां प्रहलाद की बड़ी कोशिश सी कि जिहड़ा राम का रस मेरे कोल है, जो धर्म मेरे कोल है, वह मेरे बापू कोल भी होवे, वह मेरे पिता कोल भी होवे। पर नहीं, हरनाकश इस दौलत तो वांझा ही रह गया। जो नाम की दौलत प्रहलाद कोल सी, वह हरनाकश कोल नहीं सी। चाहते सन प्रहलाद कि मेरे बापू कोल भी होवे, पर गल नहीं बनी। चाहते सन गुरु रामदास जी महाराज मेरे पुत्र कोल भी होवे, पर गल ना बनी। इत्थे एक दूजे नूं यह दौलत दित्ती नहीं जा सकती, स्वयं कमाणी पैंदी है, आप कमाणी पैंदी है। मनुख उस दिन पूर्ण बनता है, धार्मिक तौर पर उस दिन धनवान बनता है, जिस दिन इसके कोल ज्ञान भी होवे और श्रद्धा भी होवे, अंदरों पूर्ण हो जाता है। तो साहब कहिंदे ने, मेहनत मुशक्कत यह मेरा सौरा, सुरत मेरी सस है, इन्हों के संयोग तो एक लड़की का जन्म होया जिसका नाम है भगती। साहब कहिंदे ने, वह मेरी कामण है, करणी कामण है कर मन लै। त्रिपता जी बोल उठे, नानक जी सुलखणी दे नाल व्याह असी कराया सी, भगती रूपी कामण नाल व्याह किसने कराया और कदों होया? गुरु नानक इस दे संबंध च भी दसते ने। साहिब कहिंदे ने, साहा संजोग व्याह विंजोग, सतपुरशां दा जो संजोग होया, जो सतसंग नसीब होए, यह मेरी मंगनी होई सी। सतपुरशां दी सोहबत च मैं बैठा तां भगती नाल रिश्ता जुड़िया, सतसंग दा संजोग मेरी मंगनी होई सी। ते जद विकारां दा वियोग हो गया, दुराचार निकल गए, दुष्कर्म ढह गए, तां मेरा व्याह हो गया, ये मेरा व्याह हो गया। दुष्कर्म दे खत्म होंदियां, गलत विचारां दे खत्म होंदियां, गलत कर्म दे मिटदियां ही भगती प्रगट हो गई, भगती मैनू मिल गई। साहा संजोग व्याह विजोग, सतपुरशां दे संजोग नाल रिश्ता जुड़िया सी। गुलिस्तान दे चिक बोल बड़ा कीमती है, ईरान दे प्रसिद्ध संत शेख सादी दी ए महान रचना है गुलिस्तान। कहिंदे ने, वो एक दिन बैठे सन, हाथ धो रहे सन मिट्टी दे नाल, कोल बैठे उन्हां दे शागिर्द वो पुछदे ने, उस्ताद जी थोड़े चेहरे ते हर वक्त मस्ती रहिंदी है, रौनक रहिंदी है, तुसीं खुश रहिंदे हो, आनंद दे च रहिंदे हो, जबकि अठे पैर अपने आप नूं खुश रखना बड़ी औखी गल है, पर तुसी अठे पैर खुश रहिंदे हो, अठे पैर प्रसन्न रहिंदे हो, अठे पैर खेड़े ते मस्ती विच रहिंदे हो, आखिर थोड़े कोल ऐसी की चीज है, सानू भी ये राज दसो। ते कहिंदे ने, जो मिट्टी हत्थां दे सी शेख सादी दे, उस मिट्टी नूं आप सूंघण लगदे, काफी देर तक सूंघदे रहे। शागिर्द कहिंदे रहे, उस्ताद जी सानू दसो कि थोड़े कोल इतनी प्रसन्नता किस तरह है, इतना खेड़ा किस तरह है। शेख सादी कहन लगे, थोड़ा सवाल मैं मिट्टी ते कीता है, मिट्टी बोलेगी मैं दसांगा। हैरान ने विद्यार्थी, पर बड़ी सुंदर नज़म दे राही विद्यार्थियों नूं समझाया है ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀਨ। ਗਿਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਰ ਹੁਮਾਮ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੀਦ ਅਜ ਦਸਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਦਸਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਗੁਫਤਮ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ ਯਾ ਅੰਬੀਰੀ ਕਿ ਅਜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਸਤਮ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਹੈ, ਅੰਬੀਰੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਤਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ ਅੰਬੀਰੀ ਗਜ਼ਨੀ ਕਾਬਲ ਦੇ ਚ ਜੋ ਅਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਗੁਫਤਮ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਅੰਬਰ ਯਾ ਅੰਬੀਰੀ ਕਿ ਅਜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੇ ਤੂੰ ਮਸਤਮ। ਦਸਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਹੈ, ਅੰਬੀਰੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲੀ ਬਾਉ ਗੁਫਤਾ ਮਨ ਗਿਲੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੂਦਮ ਵਲੇ ਕਿਨ ਮੁੱਦਤੇ ਬਾਗੁਲ ਨਿਸ਼ਸਤਮ। ਮਿੱਟੀ ਬੋਲੀ ਐ ਸ਼ੇਖ ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਬਾਉ ਗੁਫਤਾ ਮਨ ਗਿਲੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਬੂਦਮ ਗਿਲੇ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਵਲੇ ਕਿਨ ਮੁੱਦਤੇ ਬਾਗੁਲ ਨਿਸ਼ਸਤਮ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਾਲੇ ਹਮ ਨਸ਼ੇ ਦਰਮਨ ਅਸਰ ਕਰਦ ਵਗਰਨਾ ਮਨ ਹਮਾ ਖਾਕਮ ਤੇ ਹਸਤਮ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨੇੜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਮਕ ਦਮਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਹਬਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਇਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਇਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਨੇ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ ਗਏ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਗਤ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸੱਤਮ ਜਾਣੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗਾਂ। ਮੁਖਤਸਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਫਸੀਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਰਾਲਵਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ।
4: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
5: ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 1550 AM ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1550 AM ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1550 ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
6: ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ
7: ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 1
6: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹਰਬਲਸ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
7: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟਾਕਿੰਗਸ ਆਰਥੋਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
6: ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਏਡ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
7: ਫ੍ਰੀ ਪਲਿਸਟਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੇਮਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
8: 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੌਕ
6: ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਿਰਨ ਐਟ 604-581-1900
9: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਟੈਕਸ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਬਾਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ 604-325-8370 604-325-8370

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय

सम्मान योग उपस्थित गुरु रूप सत्संग जीओ गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे छाए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखने की एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहप्पन दा खजाना है। लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसी भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ये तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान किया, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़िया है। तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही हुलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदन अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होंदी है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच, एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक दी व्याख्या। और फिर फैसला गुरबाणी दा, पता है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नू समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है,
नहीं ते सदा ही नापाक गंदगी दी ढेर गलाजत नाल भरे आया मैला। महाराज शुद्धता मनदे ही नहीं, एक नू समझे बिना कोई शुद्ध नहीं, एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं। कोई बहुत वड्डा दानी है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, ये खुद भी अपवित्र, एदे दान विच भी अपवित्रता होवेगी, एदे दान विच भी हंकार दी बू होवेगी। कोई बहुत वड्डी सेवा कर रहा है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, इस सेवा दे चवी हंकार ने जन्म लेना है, निरंकार ने नहीं। कोई जप कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, और तरह तरह की सेवा दे जुटे होया है, ना एक दी समझ, ना एक नाल जुड़े है। तो मैं अर्ज करा इना सारे धार्मिक कर्मां दे चों हंकार ही प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। और जिस जिस कर्म तो हंकार प्रगट होवे उस कर्म नु निर्मल नहीं आख्या जा सकता, तो मलिन है, वो तो मैला है। जो खुद मैला है उदा दान भी मैला, जो खुद मैला है उदी सेवा भी मैली, और जो खुद मैला है यकीन जानो उसका गुरुद्वारे बैठना भी मैला है। क्योंकि जितने चिर तक खुद शुद्ध नहीं होवेगा इसका कोई कर्म शुद्ध नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता किवें शुद्ध होवेगा, किवें पाक होवेगा, यह किस तरह पवित्र होवेगा। तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, एक वत्त बूझे तो होवें पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एकाग्रता बख्शनी, एक नू समझे, एक नल जुड़े, एक नू जाने ते तू पाक है, पवित्र है, शुद्ध है। जे एक नू तू समझिया नहीं, एक नू तू जानिया नहीं, एक नाल तू जुड़िया नहीं, तो बिन बूझे तू सदा ना पाक। मैं फिर अर्ज करा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक। दुनिया के वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जिन्हों के बोल आरंभ आते ने एक तो, बाणी आरंभ आती है एक तो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तवज्जा, ध्यान बख्शना, इति पहली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। दरअसल संसार दे तल ते वो अनेक है, और खुद वो अपने आप दे निरंकार दे तल ते एक है। आकार दे तल ते अनेक है, निराकार दे तल ते एक है। वो सरगुण दे तल ते अनेक है, वो निर्गुण दे तल ते एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, ये बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए इनू पढ़न वाले, सुनन वाले, गाण वाले बहुत आउणगे, पर सतगुरु का फैसला है बाणी बिरलो विचार सी। ये कोई बिरला विचारेगा और बिरला ही अपने सोच मंडल दे चले आवेगा। जद असी कहने फलाना मनुख बदल गया, तो की बदल गया, हाथ बदल गए, पैर बदल गए, मुंह मत्था बदल गया, कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गया, सोचनी बदल गई है, चितवनी बदल गई है। विचार दे बदलदिया मनुख का संसार बदल जाता है, सोचनी दे बदलदिया मनुख का आचरण बदल जाता है, चिंतन दे बदलदिया मनुख का सब कुछ बदल जाता है, सारे का सारा व्यवहार बदल जाता है विचार दे बदलदिया। और किधरे बहुगिणती दे मनुखां दे विचार बदल जान, इसे नूं कहिंदे ने युग बदल गया, समा बदल गया, युग बदल गया। युग दी तब्दीली मनुख दे विचारां दी तब्दीली है, और मनुख दे विचारां दी तब्दीली युग दी तब्दीली है। बहुगिणती दे मनुखी विचार बदल जान तो सारे दा सारा आचार बदल जांदा है, युग बदल जांदा है।
और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख जो विचार नु मत्था टेक दी है। विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दी है। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिदा। इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भी बहुत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वह आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना हो तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखदा है। जिस दे अगों तू झुक रहे है ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जा। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है। पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, यह सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जाच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। मनुख का मन की है? विचारां दी मूर्ति होर की है? ए भेट करने की जाच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेट करता है, गुरु अपने विचार इसनू दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नु भेट करना की, अपने विचारां नु भेट करना। हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की? कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिरी ना चारां दा मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहंदे ने बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस ऊपर ले रखियो गुमान है कि तेनू हड्डियां दा माण है, तेनू मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। जैसे असी वक् वक् रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नू नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्म ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मां दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानू मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वक् वक् दे दिता। किसे नू गोरा, किसे नू काला, किसे नू सांवरा, किसे नू लाल, किसे नू जर्दी मायल, किसे नू गेहूआ रंग, एक रंग नहीं है। तुद वेखी जगत उपाया, परमात्मा दी पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेक रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंके उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है,
रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े होया मांस, और मांस दते लिपटी हुई मिंज, और मिंज दते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन अहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां मांस मिंज कलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है। विचार, सोचनी, चितवनी ते अहंग, इसनू कहिंदे ने मन बुद्ध चित अहंग। मन बुद्ध चित अहंग, इसनू शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहिंदे ने। चतुष्टा अंतःकरण, चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है, ते किस विचार नू तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया। बुद्ध ते जद मनुख किसे नू याद करदा है या याद दे च बैठा है, चिंतन दे च बैठा है, ओही मन बन गया चित्त। मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है अहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये अहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन। मन बुद्ध चित अहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हाँ, एक निर्मल हंकार भी आउंदा है। पहले मनुख तन दा माण करदा है, धन दा माण करदा है, जोबन दा माण करदा है, प्रभुता दा माण करदा है, परिवार ते माण करदा है, जात ते माण करदा है, कुल ते माण करदा है। लेकिन जद हंकार बदल जांदा है तो ये रब ते माण करदा है, बाकी किसे ते माण नहीं करदा, गुरु ते माण करदा। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे। हे प्रभु, हे सच्चे, तू मेरा माण है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते माण। तन ते माण है, धन ते माण है, जोबन ते माण है, प्रभता ते माण है, परिवार ते माण है, कुल ते माण है, जात ते माण है। इत महिला है, हंकारी है, यही लोगों को है। कोई जोबन दा माण करदा है, कोई प्रभता दा माण करदा है, कोई धन दा माण करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा बड़ा सुंदर प्रमाण, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा। धन दा माण, जोबन दा माण, प्रभता दा माण। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आउंदे, माण तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी माण आउंदा उन्हां कोल, किस्ते उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहिंदे ने, माण मांगो ताण मांगो धन लखमी सुत दे। हे प्रभु, निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल ताण नहीं, उहदे कोल माण कहदा। और जो निताणा है, निमाणा है, उह ते मरण तो पहले मर गया, उह ते कबर ते चला गया, उह ते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा आउंदा है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, और मरण तो पहले मर गया आउंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगह नहीं। कमजोर कहिंदे उस लई कोई थां नहीं। ते जद किसे तरह दी भी कोई ताकत नहीं, ना धन दा जोर, ना जोबन दा जोर, ना कुल दा जोर, ना जात दा जोर, तो जोर किसदा? जोर हुण प्रभु दा। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे। हे प्रभु, हुण तू मेरा तान है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही माण है।
परमात्मा निर्मल है, उसका माण भी निर्मल है, बाकी हंकार मैला है। विचार जब बदलते ने तो हुण मैं इस करा मनुख के विचारां विच है कि मनुख की सोचनी विच की है। अगर कह दईए विचारां दे बदलदिया संसार बदलदा है, सोचनी दे बदलदिया जिंदगी बदलती है, चिंतन दे बदलदिया यादां दे बदलदिया ही सारी दुनिया बदलती है, हंकार दे बदलदिया ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल यह पैदा होंदा है मनुख दे विचारां विच की है, सोचनी विच की है, यादां विच की है। धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहिंदे ने कि मनुख दे विचारां विच, मनुख दी सोचनी विच और मनुख दे चिंतन विच काम है, लोभ है, अहंकार है और की है, कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं अंदर किहड़े पै विचार चलदे ने, पढ़ो अपनी सोचनी नूं, सोचनी विच की है, और पढ़ो अपनियां यादां नूं, यादां विच की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है, अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना, बहुत कुछ पढ़ लेना, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तेरे सिर दे च की चल रहा है, तेरे दिमाग दे च की चल रहा है, तेरे मन दे च की चल रहा है, पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न की जाच आ जाए साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे, शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना दे लीन है, मन नो समझण की कोशिश पिया करता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी इत्थे तक कहिंदी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े स्याणे सन, बड़िया शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। वो भी मन दियां गहराइयां नूं समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ इंज कहना चाहिए, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लैणगे, किवें कर लैणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और वो कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा उही कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, ओही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया, किसे होर ने नहीं ठगया, मन ने ठग लिया बिशनु नो, मन ने ठग लिया शिव जी नो, मन ने ठग लिया इंद्र नो,
जो आम साधारण मनुख भूल कर देने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सैस शरीर तहन भग हुआ तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचनी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है, मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है, क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्हां दी छाया है, काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा, गुस्सा आउंदा। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिहड़ा अहंकार नूं पट्ठे पा दे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे तुहाडे जैसा कोई दानी नहीं, तुहाडे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो ते सेवा हो नहीं सकदी, तुसी ना हो ते गुरुद्वारे चल नहीं सकदे। कुछ ते अहंकारी ऐसे हुंदे ने वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करदे ने। कहिंदे ने ज्ञानी जी असी ना होईए ते जलूस किवें निकलेगा, असी ना होईए ते स्कूल दे दरवाजे बंद हो जाण, असी ना ही होए तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक कोई जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ आंदा रहेगा। इत केती गई देख बाजे बजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलन गए, मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलन गया। पर इसनू कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ आंदा रहेगा। एवं तेरा अहंकार, फिजूल अहंकार, फोका अहंकार। तो जिहड़ा अहंकार नूं पट्ठे पा दे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नूं समझणा है, थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है। यह भी मैं अर्ज करदे हां। और अंतरमुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी। तो अंतरमुखी ओ ही हो सकेगा जो सुनदा है। तो सुनना ही तो कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है। मंजिल इको ही है, ठिकाणा इको है। साढ़े हिंदू वीर जाते ने मंदिरों के दर्शन करने लिए किसी देवते अवतार की मूर्ति दे। सारी साधना अखां ते खड़ीए, वेखण ते खड़ीए, दर्शन ते खड़ीए। दर्शन करने ने वेखना, अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शना ते खड़ीए। अज एक मंदिर दी कोठड़ी दे भगवान नूं वेखीए, फिर बाहर वेखीए, फिर सारा संसार भगवान दा रूप दिखाई देवे। साधना है, वेखना है, दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज,
ساری سادنا پڑھن تے کھڑی ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھن تے کھڑی ہے، ویکھن نالوں تھوڑا جہا پڑھنا یہ واسطے اکاگرتا چاہی دی ہے، تھوڑی جہی سکھ جاندے نے گردوارے سنن لئی گرو کا شبد، ساری سادنا کنا تے کھڑی ہے، سنن تے کھڑی ہے، ویکھن نالوں پڑھنا اوکھا ہے اور پڑھن نالوں سننا اوکھا ہے، کٹھن ہے، اس چکر چنا پینا کہ اسی اتنے سارے بیٹھے ہاں سارے سن رہے ہیں، کتا ہی نہیں دو چاراں تو زیادہ کوئی نہیں سن رہے، سب اپنے وچاراں نو سن رہے ہیں، سب اپنی سوچنی نو سن رہے ہیں، سب اپنی یاداں چ مہو اندر جو پھرنے چل رہے ہیں سب انہاں نال جڑے ہیں، کٹھن ہے، اگر کوئی سنے تو صاحب کہنا نانک بھگتاں سدا وگاس، سنیے دکھ پاپ کا ناس، سندیاں ہی دکھ ناس ہو جاندے، سندیاں ہی پاپ ناس ہو جاندے، سندیاں ہی گرو کا شبد اندر پرویش کرے گا، سندیاں ہی گرو دی وچار اندر پرویش کرے گی، اندروں ہنکار نکلے گا، اندروں دکھ نکلن گے، اندروں سنتاپ نکلن گے، سننا ہی تے اوکھا ہے، اور سن وہی سکے گا جس دا پورا دھیان اکاگر ہوئے، ادھر بھٹکتا پیا، ادھر بھٹکتا پیا، ادھر ویکھ رہا ہے، ادھر ویکھ رہا ہے، تو سپشٹ ہے کہ دا دھیان بھی بھٹک رہا ہے، انہیں کی سننا ہے، سنن لئی دھیان دی پوری اکاگرتا چاہی دی ہے، ایک منک اچھی اچھی بول رہا ہوں دا ہے، دوسرا سن رہا ہوں دا ہے، تے سنن والا اچن چیت کہہ دیں دا مطرہ اے گل پھر آنکھ میں نہیں سنی، تو کیوں نہیں سنی، جد بولن والا اتنی اچھی اچھی بول رہا ہے، تو کہیں دا میرا دھیان کسے اور پاسے چلا گیا، بنا دھیان دی اکاگرتا تو سننا کٹھن ہے، اور بنا سنیا گرو دے شبد دا اندر پرویش ہونا کٹھن ہے، اور شبد دے اندر دے پرویش ہوئے بنا دکھاں دا باہر نکلنا بھی کٹھن ہے، دکھ تاں ہی باہر نکلن گے، سنتاپ باہر تاں ہی نکلن گے جے شبد اندر پرویش کرے گا، نانک بھگتاں سدا وگاس، سنیے دکھ پاپ کا ناس، سن کے ہی منک سدھ بن جاندا ہے، پیر بن جاندا ہے، ناتھ بن جاندا ہے، گینی بن جاندا ہے، دانی بن جاندا ہے، اتنا پاون ہو جاندا ہے کہ 68 تیرتھ بھی اس تو صدقے کیتے جا سکدے نے، سنیے 68 کا اشنان، اتنا پاون ہو جاندا ہے، وہ تو اتنا پوتر ہو جاندا ہے جے کدھر سنے، بھوجن دی برکی منہ دے راہی اندر پرویش کر دی ہے، وہ پچ کے منج بن دیے، خون بن دیے، ماس بن دیے، شریر دی شکتی بن دیے، توانائی بن دیے، اندریاں دا بل بن دیے، گرو دا شبد کنا دے راہی اندر پرویش کرتا ہے، یہی سمادھی بنتا ہے، یہی آنند بنتا ہے، یہی دیوی گن بنتا ہے، یہی پرم شکتی بنتا ہے، یہی روحانی طاقت بنتا ہے، پر شبد تے کنا دے راہی اندر پرویش کرے گا، اور ادوں پرویش کرے گا جد کوئی سنے گا، اور سنے گا وہی جس دا دھیان پورا اکاگر، نہیں تے کون سنتا ہے، شوقیا لوکی اپنے گھر دے وچ بھی اکھنڈ پاٹھ رکھا لیندے نے، پر جس کمرے دے وچ رکھاندے نے اتھے وڑنا ہی بھل جاندے نے، کدھر سننا نہ پی جائے، کون سنتا ہے، کٹھن ہے، منک پتر نو سن سکدا ہے، متر نو سن سکدا ہے، پتنی نو سن سکدا ہے، پتی نو سن سکدا ہے، گرو نو سننا اوکھا ہے، کٹھن ہے، کارن گرو دی گل، گرو دی وچار ساڈے وچاراں نال تال میل نہیں کھاندی، ساڈے وچاراں چ کام، گرو دے وچاراں چ رام، ساڈے وچاراں چ کرودھ، گرو دے وچاراں چ دیا، ساڈے وچاراں چ ہنکار، گرو دے وچاراں چ نرنکار، نرمانتا ونمرتا تال میل نہیں بیٹھتا، واجے دی سر ایک پاسے جائے، تبلے دی سر ایک پاسے جائے، کدن تال میل نہیں بیٹھے، تال میل نہیں بیٹھے، تال تبلا سر تال دوہاں دا میل تے بیٹھنا چاہیے، سر کسے پاسے جا رہی ہے، تال کسے پاسے جا رہی ہے، گرو دے وچار کچھ اور، ساڈے وچار کچھ اور، تال میل نہیں بیٹھتے، اور کہندے نے جتھے تال میل بیٹھ جائے رس بنتا بھی اتھے ہی ہے، ورنہ رس نہیں بنتا، اور کسے دن کیرتن سندیا کسے نو رس آ گیا ہے، تال میل بیٹھ گیا، اول تے میں دیکھے ہے کیرتن دا رس تے کسے نو ورلے نو ہی آمدہ ہے، لوگ سوراں دے آوازاں دے اگلے دے رنگ روپے چی یا ویرت دیاں ساکھیاں چی پھس کے رہ جاندے ہیں، جنہاں دا اتہاس نال بھی کوئی مطلب نہیں، سچائی نال بھی کوئی مطلب نہیں، میں تے اتھے تک دیکھے اتنی نیوی لوکاں دی سروت، یہ کس طرح گرو نو سننگے، یہ کس طرح گربانی نو سننگے، یہ بانی
बिरलो विचार सी देखो गुरमुख होए। सच दी विचार फोकियां साखियां नहीं, और जेड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब दी विचारधारा ते पूरी नहीं उतरदी उसकी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने ईश्वरी गुण ने, ये सुन के ही अंदर प्रवेश कर देने। शब्द अंदर प्रवेश करेगा समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। इति पहली हो गई, वो अनेक भी है वो एक भी है, वो एक भी है वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहत है वो आकार वाला भी है, वो सरगुण है वो निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कदी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया, एक जैसा दूसरा नहीं है। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज नवी चाल, और गजब दी गल नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने, और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग। आवाज अलग, चाल ढाल अगर, रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1000 फल लगे ने, 10000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नूं लगे ने, सारे एको दरख्त दे फल ने, तो एक जैसे ने कतई नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे, लाजमी फर्क होएगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साड़ी पकड़ दे आवे भावे ना आवे, वह फर्क साड़े तौल दे आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा विच रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाने लग पाया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर देती है कि गालबन 50 अरब सूरज सड़ी पकड़ दे, सड़ी समझ दे आ गए ने इतने। इस तो अगा भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन दे दौर दे ने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहे है एक दिन मिट जाएगा, चंद्रमा घट रहे है एक दिन मिट जाएगा, धरती घट रही है एक दिन मिट जाएगी, मनुख घट रहे है एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बदता है, घटता है, मिटता है। ये तिने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारिया ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थले असीं जी रहे हां ते अपनी जवानी हंडा चुके है, बुढ़ा हो गया, 40 लख टन वजन 1 सैकंड दे चिस्ता घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ये घट रहा है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नूं ही महापरले कहंदे ने।
एक ब्रह्मण दी परले, एक ब्रह्मण दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे, भावे अरबा खरबा इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दोहराण लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नू ना लईए, लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे की छाप लेके, नवी उंगलियां की छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जेहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वक वक है, पर इस सारी अनेकता दे रमे आया एक है, एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहते ने, एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या तो बच्चे खेडते ने खेल, या परमात्मा खेडता है, बाकी खेल नहीं है। जिस दिच जित होवे, जिस दिच हार होवे, वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दिच नफा होवे, जिस दिच नुकसान होवे, वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड़ियां खेलां ओलंपिक, मेरी दृष्टि वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने, कहिंदे फलाना मुल्क हार गया, फलाना मुल्क जित गया, ये जंग है या कि खेल है? और जिस

घिरना होवे, जिस विच हार दी बेइज्जती होवे, ते जिस विच जित दा तकबर होवे, उनू खेल आखण दी की लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस विच नुकसान दा दुख होवे, जिस विच नफे दी खुशी होवे, उनू खेल आखण दी लोड़ की है? ये ते धंधा है। खेल बच्चे खेडदे ने, खेल परमात्मा खेडदा है। दरिया दे कंडे ते सागर दे तट ते बच्चे खेल पे खेडदे ने, रेत दे महल खड़े कर रहे ने, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल। तो क्या इन्हां बच्चियां ने इन्हां महलां दे च रहना है जो इतनी मेहनत नाल पे बनांदे ने, इतनी एकाग्रता नाल बना रहे ने? नहीं, खेल है, पर बड़ी लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल ये महल खड़े कर रहे ने। महल बन गए ने, इधरों सूरज डुबण वाला है, शाम हो गई है, घर दी याद आई है। हसदियां हसदियां रेत दे महल खड़े कीते सन, हसदियां हसदियां हुण तोड़ रहे ने। बड़ी एकाग्रता नाल बनाए सन, बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे ने। जद बनाण लगे सन खुश हसदियां हसदियां, अज मिटाण लगे ने खुश हसदियां हसदियां। खेल है, तंदा नहीं है, जंग नहीं है। बनाना भी खेल सी, मिटाना भी खेल सी। आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, परमात्मा दी दुनिया च वी ओदी दृष्टि जी सब कुछ खेल। जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुढ़ेपा एक खेल। क्योंकि जवानी बुढ़ेपे च बदल जाती है, जन्म मरण दे च बदल जाता है, नफे नुकसान दे च बदल जाते हैं, इज्जत बेइज्जती दे च बदल जाती है, जिंदाबाद दे नारे मुर्दाबाद दे च बदल जाते हैं। खेल तमाशा सुंदरता कुरूपता दिच बदल जाती है, हासे रोणिया दिच बदल जाते हैं। फूल खिलता है मुरझाने का तहैयल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। हासियां दे थले परेशानियां छुपिया पई ने, दुख संताप जो है छुपे पे ने, जन्म दे थले मरण छुपया पे है। खेल तमाशा बनाण लग्या प्रसन्नता है परमात्मा नो, बिठाण लग्या भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जांदा है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जांदा है। खेल संकोचे तो नानक एक है, जैसे खेल नू संकोचदा है एक, तो जद खेल खेलन लगदा है अनेक। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। इस अनेकता विच जिहड़ा एक नू वेख लवे, एक नू समझ लवे, वह पवित्र है। उसनू किसी नाल घिरना नहीं होवेगी, किसी मुल्क नाल, किसी जात नाल, किसी व्यक्ति नाल, किसी कौम नाल, किसी धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नू वेख के भी उस दे अंदर झरनाट वजेगी, मंदिर नू वेख के भी उस दे अंदर खुशियां जागनगियां। गुरुद्वारे ते चर्च दे कोलो लंघिया होई उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगा पैदा होणगियां, भेद ते मिट गया, उहनू दिस पिया अनेकता दे अंदर एक है। अनेकता उसका खेल है, वास्तविक वह एक है। सूरज एक है, किरणा अनेक ने, सागर एक है, लहरा अनेक है। जिसनू लहरा नाल नफरत है उन्हों सागर नाल भी नफरत है, जिन्हों किरणा नाल नफरत है उन्हों सूरज नाल भी नफरत है, जिन्हों अनेकता नाल नफरत है उन्हों एक नाल भी किरणा है। उन्हों एक दी कोई समझ नहीं, उसने एक दा कोई बोध नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तो सदा ना पाक। जे एक नू समझ जाए तो पावन है, पवित्र है, ते जे नहीं समझया तो अपवित्रता दी ढेरी। भट्टा ने इस संबंध च एक सवैया उच्चारण किया, कह के मैं समाप्ति करा, एकाग्रता बख्शनी। और धन गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा दे भट्ट फरमान करदे ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू पढ़िया, दो तीन चार पांच नहीं, एक। सिर्फ एक नू पढ़िया ही नहीं, मन विच भी एक नू वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहिंदे ने, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न तैयार, दूजी तीजी गल मैं सुनन नू तैयार नहीं, पढ़न नू तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़ता। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक।

मित्रंत अजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम।

तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। कि तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौमें नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हाँ। अहंकारी की सारी साधना है मैं हाँ मैं हाँ। उदी सारी भज दौड़, उदी सारी किरिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती, जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार, अज राह चोनार, कि सलामत न कुनत इस ढंग नाल चल रस्ते देच, कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत दिच इस ढंग नाल रह, कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना हो। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खुआनद और इमामद न कुनद, कि किधरे इबादत करनु तेरा जी करे, तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए, और नमाज पढ़ने आ मस्जिद दे भी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे भी तो लोग प्रधानगी लभदे ने, कि प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान। जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठण दी कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों के सिर के उत्ते ही होंदे। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरदा है। इस वास्ते कहने गरूर का सर नीचा, आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नु तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नु भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है,

सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं गृणन्त अनेक माया विस्थिरणे। यह अहंकार तेनु दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनु जाच नहीं। अहंकारी के मुंह ना निकलता है, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होए और हां कहने की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होए उतने ही जबान ते आ जाता है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां विच जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना, हां कहना ही भुल गया। हां कहने विच इन्हों अपना छोटापन प्रतीत आता है। जायज गल भी नौकर ने कह दी है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, ता भी मालक कहता है ना। नौकर दी हां च हां मिला दी है, ना। अहंकारी ना करता है, सब नू ना करता है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करता है, और जितना ना ना करी जाता है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं गृणंत अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होता है, इसे दुश्मनी बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते हैं

शरारद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमारारद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जी तो खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको मीत हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नु उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नु। जड़ चेतन सबनों अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारिया नु मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी ढंग दस दिए एक सज्जन सब सजना एक वैरी सब बात। जब उस एक नु सज्जन बना लेंदा है तो एक नाल सज्जनता का जब रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है। जीवन धन हो जाता है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे चवो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया। सब मित्र सबको मीत हम आपने कीना। पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर वो धार्मिक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलता है और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जाता है। सारा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है बहुत जपीश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया है दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़ पोशाक चोला भेंट कीता। भावे साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण कर रहे हैं। पर राजा कहन लगा आखिर मैं खालियत किस तरह जो है आपदे दर्शन करां ये नजराना है ये भेंट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसे नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिनों बाद इस त्यागी वैरागी साधु दा एक मित्र बूढ़ा मित्र बचपन का दोस्त और वो भी साधु से वो भी तपस्या कर रहा से मिलन ले आया है। लालवन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल संत दी
ਕੁਟੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਸ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਧੂ ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਸਾਧੂ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਰਮਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ, ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ। ਜੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਸ ਚੋਲੇ 'ਤੇ ਔਰ ਚੋਲਾ ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਉਸ 'ਤੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ 'ਤੇ। ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਖੈਸ਼ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਏ, ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੋ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਖੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਬਿਖਰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਸ ਬਿਸਮਾਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਆਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਉਬਲ ਪਿਆ, ਬੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈਦਾ? ਖੈਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ,
दूसरे घर गए। दूसरे घर वाले भी निगाह इस साधु पे, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे से शांति है। और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे ने, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला, तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने, रह गई इस चोले की गल। ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे उची वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिए सी, पर निकल गई है गल, कि सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा नु प्रभावित कर रहे है, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नु देख रहे हैं। सवाल पूछ रहे है, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करने, ना गल करके भी कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, एले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया, तीन दफा तू लगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसने भी हंकारी छुपाने की कोशिश करेगा, पीछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरियारी। ये बड़े बुरे पुरुष होंगे ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते ने, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर कित्थे? तो मित्र नु छुपाते ने, पुत्र नु छुपाते ने, अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नु ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नु भी पिछे सुटिए, परमात्मा नु भी पिछे सुटिए। और नाकिस ने पिछे सुटन दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकता, अहंकार जींदा है मैं आश्रित, तो ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नु अगे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं,
ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਖਰ ਬਕਰੇ ਨੇ ਕੀਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਸ ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਨਾ ਮੈਂ

0: के गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वज देता।
0: गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते मैं।

आंदरा रह गईया सुट दतिया गईया, बाकी ते सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मास कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईया कम विच वर्तिया, केवल आंदरा बच गईया। ये नदाव चुक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी दी जिहड़ी तंग लाई जांदी है वो बकरे दी आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है। ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए, ये आंदरा ही रह गईयां सन।

जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा, बस उस नाली रुई पिंजी जांदी है।

0: कोई बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे बूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसी वैद्य को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है देव, है हकीम, कौन परमात्मा, तेरी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लभनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जी किधरे अंदरों निकले तू ये औषधि हो गई। मैं ये रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ई जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है। ये रोग अंदर है तो वैद्य भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर। कह सब कुछ तो ही है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु तू ही है। जितना कहता जाएगा उतना मैं मिटता जाएगा, और जैसे अहंकार पूर्ण तौर पे मिटेगा वैसे निरंकार पूर्ण तौर पे प्रकट हो जाएगा, और तू निरंकार का रूप हो जाएगा, ईश्वर का रूप हो जाएगा। गुरु कृपा जय नरको कीने ते ए जुगत पछाणी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਤਨੋ ਮਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਦੋ ਪੁੱਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਗਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੋਣੋ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਆਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੁੱਤ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਮਰੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਗੁੰਗਾ ਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਏ। ਜੀਵ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੀ ਹਲਦੀ। ਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਤੇ, ਜੀਵ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਗਾ ਏ ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣੋ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ये सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

गहने पौन पानी पैसन तचान सुरजुतार सगली धरती मातन वर्तन सरजन जा नानक मूसे ज्ञान बिहूनी खाए गया जमकाल महला पेला वन चेले नचन गोरे पैर हलान फेरन सिर उड़ उड़रावा चाटे पाए देखे लोक से कर जाए रोटियां कान पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान

दे दे मंगेशे सगुण सो परे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रा बाबे कार एक होंदा खाच ले था तिना भी कई कार जल था जिया पुरिया।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हम हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की संतोखी जिन्हें सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपालोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पुजा खानी सेत जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता कर

पौड़ी सच्चा साहिब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू देहत से मिले सच ता तिने सच कमाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया। मूर्ख सच ना जाननी मनमुख जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया, विच दुनिया का।

0: काल पूर्ण वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों बेदाल जेक होय तो कबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा को रे रंग ना सोए पैबज खुम चढ़ाई ये सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजूर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आख है पत प्रवण पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे
1: महला ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात न जोर है।

0: तुवा पूरा तपे का सत गिर बाहो काजुगरा थगन का उड़ गैर बाहो
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अच्छा सच रहे।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण ता कसम कै मैल पाए सी कसम पावे सो

आपे पांडे साजी नापे पूरुंडे इक नी दुद्ध समाई एक चुले बैन चढ़े इक ने हाली पैसवारी कुपुरान खड़े तिना सुवारे ना।

आया का नानक सृष्ट का मूल रचया ज्योत राखी तातो जागम आया मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

मत विचार आप जी समक्ष भेंट करिए पेशतर फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर कौम दा ते हर अवतारी पुरुष दा कुछ इतिहास होंदा है, कुछ उसके सिद्धांत होंदे ने। सिद्धांत इतिहास किसी भी अवतारी पुरुष नूं समझना होवे, विद्वान कहिंदे ने पहलू तीन होंदे ने। प्रथम उसदे बोल की ने, जगत दे प्रति उसका संदेश उपदेश की है। दूसरा उसने कीता की है, उसदे कर्म की ने। तीसरा उसदे बोलां नाल उसदे कीते होए नाल होया की है, अंजाम की होया। किसी भी अवतारी पुरुष नूं वेखणे पहलू तीन ने, तीन उहदे बोल की ने। सियाणे ऐसा कहिंदे 90% मनुख अपने बोलां राहीं प्रगट हुंदा है, 10%

बाद 10 साल बाद पता चले नहीं ये गलत है, संशोधन करो। तो की पता हुण भी जिस ढंग नाल चला रहे हो ये भी कोई सही है, इहदे च भी संशोधन करना पे, और कितनी दफा करना पे, 150 दफा कर चुके। क्या परमात्मा भी अपने विधान विच संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो इहदा मतलब उहदे कोल भुल्लां होंदियां ने, गलतियां होंदियां ने। उहदा नियम भी अटल नहीं है, उहदा विधान भी अटल नहीं है, फिर उहनूं भी ठीक करना पैंदा है, उहनूं भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है, और उहनूं भी सोचना पैंदा है कि इहदे मुताबिक जगत नूं चलाना औखा है, और इहदे मुताबिक जगत नूं पैदा करना औखा है। मैं अपने विधान विच जो है तब्दीली करा, नहीं, सच्चा आप सच्चा दरबार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। परमात्मा सच्चा है, उहदा नियम सच्चा है, उहदा दरबार अटल है, उहदे च कोई तरमीम नहीं, उहदे कोई संशोधन नहीं। करमां दी विचार आउंदी है उसके दरबार विच, किस ढंग नाल आउंदी है, ये लंबे चौड़े सिद्धांतक नुकते मैं थोड़े सामने कल फिर रखांगा, क्योंकि घड़ी ते अपनी चाल नाल चलदी है। कल की तरह मैं गुस्ताखी ना करा, क्योंकि पिछे जथियां ने कीर्तन भी करना होंगे और महापुरुखों दी इत्थे विचारां होंदियां ने, इतनी जो है प्रवान करनियां। दास ने अगे जाके 7:45 गुरुद्वारा सरी दे जो है हाजरी भरनी है, उत्थे जो लड़ीवार मजमून चल रहा उसनु उत्थे तोरांगे। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने जो है विचार रखी, क्योंकि बहुत सारे दे इस ढंग के प्रश्न सन, तो ये प्रश्न अपने आप दे इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, घट तो घट मेरी छोटी जी मत के मुताबिक 15 दिन तो मंगता है इनू निखेड़न लई। तो एक दो दिन दे ची दास ने निखेड़ा करना है, भावें इस संबंध गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े शब्द ने, कलगीधर पातशाह के बहुत सारे वाक ने, भाई गुरदास जी ने इस दे उत्ते बहुत वड्डी मगजमारी की है, और नंद लाल ने भी अपनी रायां पेश कीतियां ने। तुच्छ बुद्धि अनुसार समय की गति के मुताबिक जितना हो सकया थोड़े सामने रखांगा। पंक्ति है मूल, करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। मेरे दुखा लई कोई दोषी नहीं, मेरे दुखा लई मैं दोषी हाँ। दद्दा दोष न देव काहू, दोष करमा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। समाप्ति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने और सोग अक्सर मन दे चौंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा है और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है। चाया सी कुछ हो गया कुछ सोग, मंगी सी कुछ और चीज मिल गई है कुछ और सोग, जाना सी किसे होर पासे पहुंच गए किसे होर टिकाने ते सोग, आवना सी किसे होर ने आ गया कोई होर सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हाँ नहीं आता और उस तो विपरीत हो जाता है तो मन सोग नाल भर जाता है। हर नवा दिन नवे सोगां नु जन्म देंदा है। क्यों कि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते होंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते होंदी है, ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जाते हैं। कबीर कहिंदे ने, जो मैं चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवया हर करे जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वत्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे च है तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो उस दे च बैठो खेलो ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना सियाणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वधदी है सोग भी वधदा है। सोग दे च होके आउंदे ने, सोग दे च पछतावे आउंदे ने, सोग दे च साड़े आउंदे ने, सोग दे च जलन आउंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस दे च मनुख दी सोचण शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जांदा है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन दे च रोग होवन, मन दे च सोग होवन तो ऐसे पुरुष नो किसे होर नरक दे च जान दी लोड़ नहीं, नरक भोग रहे है। ये नरक दे च जी रहे है। नरक ही क्यों, इंज कहिए कुंभी नरक दे जी रहे है। तन दे च रोग ने, मन दे च सोग ने, जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे ने, इदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। अज तक मानसिक सोग नो दूर करने वास्ते जितने मनोरंजन आए ने और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नो मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने, क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जाता है। हर तरह का मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों, मन चंचल है। चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदत भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी हुई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देता है, और सोग मन नु इतना सुकोड़ के रख देता है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई दिच बैठना चाहता है। सोग इस नु महफलां दिच नहीं बैठन देता, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देता, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देता, सोग संकोच के रख देता है, सोग सिकोड़ के रख देता है, सोग निचोड़ के रख देता है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नु जन्म देता है, कितने तरह की मानसिक बीमारियों नु जन्म देता है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है? इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने, क्यों पहुंचांदियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं ते इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उन्हां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इस दी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ए इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ए इस तरह है, दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा पूरी करन देच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है ते जे ना पूरी होवे तां वी इक रेखा छोड़ जांदी है बाकी इच्छावां इन चलदियां रहंदियां ने जिवें नदी बह रही है बावें नदी दे कोल घर है बह रही है पर नदी नाल उतना ही मतलब है जो पी ले है पानी ओही हिस्सा बने है बाकी वग रहे है दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है संकल्प जिस जिस इच्छा नू पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां ओ उस नदी दा जल बन जांदा है उस नदी दी धारा बन जांदी है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी लाजमी होवेगी व्याकुली गंभीर है ए नदी गहरी कितनी है इदा पाठ कितना गहरा है ये चौड़ी कितनी है ये गहरी कितनी है तो ए राजयोगी ए महान संत मन दियां गहराइयां नू समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है व्याकुलता ही इसकी गहराई है बेचैनी ही इसकी गहराई है और एक हकीकत है बेचैनी अजे भी नापतोल विच नहीं आई कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है बहुत गहरी है बहुत गहरी है इदियां जड़ां नहीं लभदियां इदी तय नहीं लभदी व्याकुलता ही इसकी गहराई है जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है और जिथे परबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही ये इसनू उल्टा के कह दो ए बेचैन क्यों है त्रिशनालु है ए त्रिशनालु क्यों है एदे अंदर संकल्प ने संकल्प क्यों ने एदे अंदर इच्छावां ने इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी त्रिशना तरंग खरी व्याकुली गंभीर है आलम ते इस तरह कहंदे ने जिंदगी नापी जा सकती है चलो वध तो वध कह लिए 100 साल तृष्णा नहीं नापी जा सकती व्याकुलता नहीं नापी जा सकती और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है जमीन देते वगदियां या नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने ए किन्नी मील लंबी है इदा पाट किन्ना चौड़ा है एक गहरी कितनी है एक कोई नदी है जो मन देच वग रही है ना लंबाई नाप दे चाहती है ना चौड़ाई नाप दे चाहती है ना गहराई नाप दे चाहती है वो है आसा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया बकायदा फैसला भी कर देता है बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे है और सोग किथे ज्यादा आउंदा है जिथे इच्छावां ज्यादा ने और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां होईयां ने रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं होईयां कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकदे या दावे नाल नहीं कह सकदे कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं एक भी नहीं होया गजब दी गल इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां हुईयां होन ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਨਾਦਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਹਿਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਉਜੜੇ ਦਯਾਰ ਮੈਂ, ਕਿਸ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਲਮੇ ਨਾ ਪਾਏ ਦਾਰ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਰਕ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ BC ਹੌਟ ਹਾਊਸ ਟੋਮੈਟੋਜ਼ 98 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਯੂ ਹੈਪੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका, जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकनातीस शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दित्ती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना तो चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उन्हूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा होए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई वारी चंद्रमा नूं देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ये नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं घुमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है, ते ओ एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी
सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावें शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं, सकून नहीं, जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, निहो कवल जल जानी है खिड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओ आसमान दे उत्ते ओ धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदों पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओहदे विच भी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है, पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए, सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी ए पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले,
न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर खड़ी ओ निब है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निबण वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदों असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नू मुखातब करके प्यारे नू प्यार करन दे कुछ जुगतां सानू दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार हे मेरे मना कि परमात्मा नू प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा कि तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नू प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटै बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारियां थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटै बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तो जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्रा प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा। ओह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाणियो ओह खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जींदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कईयां नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार मृतक कईयां नानका जै प्रीत नहीं भगवंत। जे उस परमात्मा दी प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन दी गल कीती हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तो उदो है जदो वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ऐ मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें। जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें असमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटने बंदगी करके ही जिंदगी है जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं।
हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा वगर मैं जो के चुनी आमदन नाबूद मरा जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जी, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचो पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने बिच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं ओ ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान ओना नू जबानी कंठ हो गई है अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर ओ कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया क्यों अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन ते हकीकत एवे असी कहांगे मिट्टी मिट्टी हो गई जमीन ते मिट्टी मिट्टी नहीं होई असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिट्टी हो गई। उस महापुरुष ओ आप शक्कर गंज है शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे जोबन चला जाए प्रीत तो बिना जवानी चली जाए प्यार तो बिना जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना ते ए अंदर नू दुख पासदा है केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है खुदा दी इबादत भी जुड़िया है ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है बेहोश होके जमीन ते गिर गए सजदा पूरी तरह कर ना सके मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया। संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलिया पैरां दियां चशियां उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है कहन लगे नमाज अदा हो गई मेरा नेम निभ गया बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते आप इको दम जमीन ते डिग पे कहन लगे लियाओ पानी कराओ मेरा वजू मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना मैं नमाज अदा करनी चाहना वा। ते किसे ने उत्थे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच उदे जिक्र विच उदी याद विच बतीत होई हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है तन नू थोड़ा बहुता खेद है हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा लियाओ पानी लियाओ आव ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा रब दी याद भी जुड़ा। ओ महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी हुन प्रेम बद्दा चक्की कर्म नहीं प्रेम ता एक अंदर दी खिच है प्रेम ता आपा वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई कैसी भगती कीती केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं अपने आप नू पूर्ण तौर ते रब दे चरणा विच उन्होंने फिदा कर दिता।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੁਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਘੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕੋਦਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਇੱਕੋਦਮ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਬਲਾਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਵੇ ਸ਼ਿਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਪਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਟਿਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਏ ਇਸ ਮੈਲੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਛੱਡ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੌਂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਖੌਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ, ਨਾ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾ ਭਵਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ? ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਸਹਾਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ ਥਰਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਤੇ ਯਕ ਲਖਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਲੜ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਮਨ
ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी जल कमले, जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है। लहरी नाल पछाड़िया है, जे लहरा उनू उठ के पछाड़ दिया ने धक्के मार दिया ने, ती विगसै असने ओ लहरा दिया ठोकरा विच भी खसी जांदा है, ओ ठोकरा विचो भी प्रेम दिया पिंगा झुटी जा रहे हैं। मेरे बाबे नानक ने इस तरह प्रीत की जिमें कमल दा फुल ठोकरा सहार के भी प्रीत प्या करदा सी। जे किसी ने वट्टा चुकया, जे किसी ने दीवाना किया, जे किसी ने मस्ताना किया, जे किसी ने पागल किया, सब कुछ सह के भी मेरे गुरु नानक साहब ने अपने प्यारे परमात्मा दे नाम नू फिर भी प्रीत की थी। दूसरी उदाहरण कृपालू दाता जी ने अमृत बाणी भी दिती कि किहो जी प्रेमा भगती करदे पए प्रमाण देंदे ने मना, परमात्मा दी भगती जे तू करन तुरिया है ते प्रेमा भगती इस तरह कर जिमें मच्छी ते पानी दा आपसी प्रेम है। वैसे ता प्रीत है मच्छी दिखे कि जितना पानी वध होवे उन्ना मच्छी खेड़े विच रहिंदी है, जितना पानी घटदा है त्यों त्यों मच्छी विच उदासीनता ते तड़ पैदा हुंदी है। ज्यों ज्यों परमात्मा दा भगत बंदगी कर

0: मन तन शांत शरीर ओदे तन नूं ओदे मन नूं खेड़ा क्योंकि मच्छी पानी विच रह के आत दी आनंद विच है। ऐसी प्रीत कर। बाबा जी ने तीसरा प्रमाण दिता कि प्रेमा भगती की है, मच्छी पानी तो बिना किसे नो समझौता नहीं कर दी। तीसरा प्रमाण दितो ने कि रे मन ऐसी खरसो प्रीत कर, नानक नाम निरंजन जान्यो। इस तरह कहन लगे रे मन ऐसी खरसो प्रीत कर जैसी चात्रक में, जिमे एक पपिया स्वांति बूंद नू प्यार प्या करदा है, जिमे एक चात्रक नक्षत्र तो डिगण वाली बूंद नू उडीकदा प्या है। ओदे सामने सरोवर पानी दे भरे ने पर कदी ओ सरोवर दा पानी नहीं पिएगा, तालाब पानी दे भरे ने पर चात्रक उस पानी नू पसंद नहीं करेगा, दरिया पानी दे भर के वगदे ने पर कदी भी ओ इस नू प्यार नहीं करेगा। पर प्यारियो सब कुछ ओ पानी वक्रे वक्रे तालाबां दे खूहां दे नदियां दे नालियां दे त्याग देगा। ओदे प्राणा दी जेड़ी प्रीत है ओ केवल ता केवल परम पिता परमेश्वर दा नाम है। जिवें चात्रक स्वांति बूंद नू प्यार करदा है ते रब दी बंदगी करन वाला सब कुछ छड़ देंदा है, सच जानो ओनू केवल गुरु ते परमात्मा ही चाहीदा है। मैं एक खिन विचों निकल के एक प्रमाण इहदे नाल होर अर्ज करना चाहना। चात्रक कदी भी समझौता नहीं करदा स्वांति बूंद तो बिना। मेरे गुरु अर्जुन साहब नूं पुछया दाता जी प्रेमा भगती की है, उन्होंने एक प्रमाण दिता ओहा प्रेम प्री प्रेमा भगत की है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है Live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.